सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दुष्टन जाहे न हर हो ताके ताप तलक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जंत में संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहु उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केलवे के सगल देहे को हरता दुष्ट दुखियन गौ शाय करता श्री अस्तुज पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांझत फल पावै सोई दुगना दसे बया बद गोयड़ सुने गुंग यो जाहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निगणत नर के रह उज याकी एक बार चौपाई को काहे चौपाई संबत सत्रह सहस पण जाय अर्ध सहसुन तीन कह जाय भादर सुधी अष्टमी रबारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखयाने

राख मोहे मन करम बचन विचार चौपाई मैं ना ग्रह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन साऊ।

अब ना जान मुझे प्रत परिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया, देख तेग जग में दऊ चल, राखा मुह और ना दल, तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सात गुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया पराग रतन प्रवार परियां शब्द गावन

जियो। सतयुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे परम सुख पावे हर हिरदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ शोभा गुरमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर ना कोई। हर हर लिव लाई हर नाम सखाई।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

साहिब जीओ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी करे स्नान सिमर प्रभ अपना

ए बेनंती सुन प्रभ मेरे बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे

बुझे डोरा निसकहिए तो समझे भोरा। कहां विष्णु पद गावे गोंग जतन करे तो विसुर भंग है पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो वह उस गवन करतार करना में दीन बेनती करे नान तुमरी कृपा तरे संसाई सुहावे चीत जो बहराई तासो प्रीत बलुआ के गिरा पीतर वसे अंध केल माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूड़े चीत वैर विरोध काम क्रोध मोह चूड़ विकार मां लोभ त्रोह आहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा पऊ अंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुए नानक कहु न सिजई बिन नावे पत जाए अशपदी दसपद दूले पाछे पावे एक बस कारण विकोड़ गुआवे एक भी न दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर से उना ही चारा ताको की जय साध नमस्कार जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताऊ मन मूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। आगनत साव अपनी देरास खात पीत बरते अन्न उलास अपनी अमान कशबा और साहुले अज्ञान नीमन रोस करे अपनी प्रतीत आवी खोवे बोर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आगे रखे प्रभु की आज्ञा मने मथे उसते चौगुण करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक बांध माया के हेत सर पर होवत जानन हेत बिरकी छाया सिंह रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चल नाल लपट रहे होते अंधंधार मटाओ से जो लावे ने दाको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाए मिथिया तन तन कुटम सबाया मिथिया में ममता माया मिथिया राज जोवन तन माल मिथिया काम क्रोध विकराल मिथिया रथ हस्ती असब वस्त्रा मिथिया रंग संग माया पेक हस्ता मिथिया त्रो मोह अवमान मिथिया सुपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथिया सर्वन पर निंदा सुन है मिथिया परदर को हरे मिथिया नेत्र पेखद पर तिरया रूपाद मिथिया रसना भोजन अनुस्वाद मिथिया चरण पर विकार को दावे मिथिया मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर विकारा मिथ्या वास लेद विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पह सबल दे नानक हर हर नाम ले वृत्ति साखत की आर जा सात बिना कह होवत सुचा मिर्था नाम बिना तन अंद मुख आव ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन मिर्थे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कस्यावर

आदि जावत जन्म मरे जिसके अंतर से निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम भाने तिन पर जाता नानक उन जन चन पराता करो बेनती।

विकराल कबहूं सर्व कियो दरबार कबहूं हे भय बड़ राजा कबहूं बेखारे नीच का साजा कबहूं अब कीर्त में आवे कबहूं भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिवी रहे गुरप्रसाद नानक सच कह कबहूं होय पंडित करे विज्ञान कबहूं मोहन धारी लावे ध्यान कबहूं तट तीर्थ स्नान कबहूं सिद साधक मुख्यान कबू की रहस पतंग हो जिया अनक जौन परमे परमिया नाना रूप जन स्वागत दिखावे ज्यो प्रभ आवे तिवे नचावे जो तुझ भावे सोई होए नानक दूजा नक होए कबू साध संगत उपावे उस स्थान ते बोर ना आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा से पार ब्रह्म के संग जो जल में जल खटन त्यों ज्योति संग जो सुमन मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के साधु कुर्बान श्लोक सुखी वसे मुस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले अष्टपदि जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने में जो उन्मंद सो उत्विष्टा का जंत आप उसको कर्मवंत कहावे जन्म रे बहु जो उन परमावे तन पूंका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकिया मुक्ता के सुख भावे तनवंता हुए कर करवावे तृण समान के संग न जावे बहु लश्कर मानु कुबर करे आस पल पितरता का होए बिना सबते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंद किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे मान सो जन नानक दर गए प्रमाण

नहीं धरवे हर दरगे को कैसे कवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही चीत जब लग मोह मग्न समाए तब लग धर्म राय देश जाए

बिना संतोख नहीं। को राजे सुमन मनोहर बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावणे आपे आप सदा सदा नानकर जाप। कर्ण करावण करने हार इसके आदका विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए। आपे आप प्रभ सोए।

पूजा सत सत से वधार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजनार को सत सब होए नान सत सत प्रभ सोए।

एको एक एक हराप पूर्ण पूर्व प्रव्याप अंक विस्तार एक ते पै एक रात प्रास्त गए मंत्र अंतर एक प्रवृत्त गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रवाया परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी।

श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप्यापन किया नानका आयापे फिर जाप अष्टपदी जब कार्य कृष्णा निष्ठेता पापन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेन न जापत तब हर शोक से व्यापत जब अपना आपन ऊंच अपना अवनेरा तब सर्व को तब हर शोक को किसे व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा कि सोवत भरम आपन खेल या भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुद को किसको गने जब एक हर गम पार तब नर सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सवाए तब से सत को दराए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डरे।

अंतर वसे बार बियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आव सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत आप सत किया सब सत तिस प्रति सगली उत्पाद तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर आप

त्रेचंदम आसनित्य गोत्रंग संजना की तू उर्मान मांगे आप छोड़ बेंती करो सासंग अग्न सागर तरो हर तन के पर ले ओ पंडार नान गुरपुरे नमस्कार।

उत्तम श्लोक साध के बचन अमली लाले रतन संत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोका निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंध करे प्रभु गाजे प्रटे गोपाल मान के माथे नानक उतरे तिनके साथे।

पूनो है सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद अप्रभधारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्वेशा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हरतन घाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब के मन सकल देव दास सुंदर चतर तत्का वेता संदासी एक दिष्टेता एक फल दिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने उन्दान जपे मन कोए सब जग में ताकी का दोए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरन शास्त्र वेद बखाणी सगल मतान केवल हर नाम गोविंद भक्त कह मन विश्राम कोट प्रात साध संग मिटे संत कृपा दे जमते।

साहिब जीओ एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोचि लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहां ले वितार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपन लख हो है ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै टुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहा जाई हुक्मे होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मे बख्शी सो एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझै ता हुमे कहे न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दा जण निशान गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिरदे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हजूर

अहंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सुर मो

असंख मोर कांद कोर असंख चोर आराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए।

अंगीकार तो सदा सलाम निरंकार पर ये हाथ पैर तंदे पानी तो तय उतर सके मूत बली थे कपड़ होए दे साबुन लिये ओ हो तो पर मत पापा के संग ओ तो पहनावे कै रंग

बंद खलासी भाणा होए हो राख न सक्या कोए जे को खाए के आखण पाए ओ हो जाने जे तिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखें से पे के जिसनो बख्त सिफ।

अख ब्रह्म अख इंद अख गोपित गोविंद अख ईश्वर अख सिद्ध अख कित बुद्ध अख दानव अख देव अख सुनर मुंजन सेव कित अख अखण पाए कित कह कह उठ उठ जाए

गावह खान चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनु गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सच नाई है पी होसी जाय न जस

खेल खेल अखेल खेल अंत को फरेक दे भेव न जानी जे भेद और कतेव रूप रंग जात पासो जानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म विहीन चकर बकर फिरे चतर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आदेवनाद मूर्था प्यो सबे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सर च्यो स्वम्भ गण भजनार काल हीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्पंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक नुस्त देख पुरख वधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंगनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेहन भेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भक्त नित्य

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दान्य चतर चक्र जान्य चतर चक्र भर्ती चतर चक्र भर्ती चतर चक्र काल पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाचरी छंद न सतरे न मित्रे न परम न पितरे न कर्म न काये अजन्म आ जाए न चित्रे न मित्रे परे पितरे प्रति से आदि से आदिर से अकिर से भक्ति छंद प्रसा कत्ते के शिज देसे के पिज पेसे के गंज करमे के पंज भरमे के पिज लोके के उदित सोके के बदूत बरने के विपूत करने के राजम प्रभात के राजम प्रवाह के धर्म तुझा है के अशोक बरने के सर्वा भरने के जगतं कीर्ति है के शत्रं क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुपे के आद देव के आप भेव के चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रही मेरा के पाक व्यम के गै बुल गैव के अमूल गुना है के शान शाह के कारण कुनंद के रोजी दहने के राज कर रही मैं के कर्म करी मैं के सुरंग कली है के सुरंग दली है के स्रोत मानिए के स्रोत दानिए के सर्वत्र गौणे के स्रोत्र पौणे के स्रोत देस है के स्रोत्र भेस है के स्रोत्र राजे के स्रोत्र साजे के स्रोत्र दीने के स्रोत्र लीने के स्रोत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देस है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देस है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानिए देव प्रधानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र भाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कली में के परम पई में के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशल सलामे सली खदमदामे गनी मल शकिस्ते गरीब अल परस्ते बिलंदल मकान है जमीन जमाने तमीजल तुमामे रजूल निदाने हरी फल जीमे रजायक जकीने अनेकल तरंग है भेद है पंग है जीजुल निवाज है गनी मलक राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सदा है देव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सब साज है समस्त सलाम है।

राधे सुभंग सर्वाग्य सु सर्वा अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप है शिष्य है श्रुत है के नरकम प्रणास है प्रतिकूल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनुप है चाचरी छंद

प्रसाद नमो नरकनाशेषदेव प्रकाशे नंगं स्वरूपे पंगं भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते।

सुलसलाम है समस्तन कलाम है के साहेब दिमाग है के उसन चिराग है के कामल करी में के राज करे ही में के रोजी दें दे के राज करें दे क्रीमल कुमाल है के उसन जमाल है ग्रीमल खराज है ग्रीमल लिवाज है रीवल चकेन है रासल विकेन है क्लंकन बनास है समस्त लनास है समस्त निवास है आगंजल अग्नि मेहन जाय कर ही मैं समस्त जबा है के साहिब कराए के नरक प्रणास है वैस्त निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमावल तमीज है समस्त लजीज है।

जमाल हैं, के अचल प्रकाश हैं, के मितो सुवास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के मितो विभूत हैं, के मितो वसा हैं, के आत्म प्रवाह हैं, के चलंग नंग हैं, के मितो अपंग हैं, मद पार छंदो प्रसाद।

मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल धर्म धाम अंश जंग आसन भंग उपमा पार गत मित धार जल थल मंड दिस विस पंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपो नास तिर तर तुरास

तुम बसें जस के जसें। भुजंग प्रजा छंद नमो सुसु जे नमो चंद चंद्र नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीज नमो राजन सात रूपे नमो परमतन स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र नादम भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बाम बंके भंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले नंगी कामे एक श्री छंद जल अभय अभय मूजू नास कास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख भेख

नो नाम में समस्तल निवास निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद सदरण प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियंकर्यंकरी मलरी में चतर चक्रवर्ती

दुष्ट हो ते ले उचाए कृपा करी अंबर जग माता ग्रंथ करा पून सवराता केलवे सकल देह कुवरता दुष्ट हो किन कोचा करता श्री तुझा पै ते अल्लाह पून करा ग्रंथ काला मन वंशित बल पावे सोई दुख नंद से व्याप्त कोई इड़ल सुने गुंग जो जा सरसना पावे सुने मूर्चित लाए चतरता आवे दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपी को के चौपी समन सदरा सहज पंडित जय हर सहज पंथीन कि जय भाद्रो सुधी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव गण सुधारा सुय पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तेरे नहीं आने हो

ले वे वाजो क्या करे विचारिया। तुदवाज समृत को हे नाय कृपा करमन वारिया, ए सुनाओ थाओ नाय शब्द लाग सुवारिया। कहे नान लेवे वाजो क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे नंद गुरु ते जाण्या। जाण्या आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल वे कटे गया अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोत टा दिनका सब सच्चे सवारिया, कहे नानके आनंद है आनंद गुरु ते जाण्या। बाबा जिस तुंदे सोच जन पावे, पावे तां सोजन दे जिसनू और क्या करे विचारिया। एक भरम पूले फिरे दै दिसक नाम ला सुवार, गुर प्रसादी मन पै निमल जिन्ना भाणा पावे। कहे नान जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारे हो कत की करा कहानी। करहा कहानी कत करे कि द्वारे पाईए, तन मन तन सत्सों गुर को हुकमनिय। पाईए हुकम मन्यो गुरु के रागा हो सच्ची बाणी। कहे नान सुन संतो कत्यो कत कहानी। ए मन चंचला जदराई किने न पाया, जदराई ना पाया किने ते सुन मन मेरिया। ए माया मोनी जिने भन पुलाया, माया तो मोनी तिने कीती जैन डुगोली पाया। कुरबान किता दिसे बिटो जन्मो मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले, कुटम तू जे देदा चले नाई तेरे नाले साथ, तेरे चले नाई तिस नाल क्यों चितलाईए। ऐसा कम मूले ना किचे जतन तपछोताई है, सतगुरु का उदेश सुन तू अवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले, आगम गोचरा तेरा अंत ना पाया। अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा। क्या को आप खाने, आख है तां वेख है सब तू है जिन जग दुपाया। कहे नान तू सदा आगम है,

पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सा लाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नजरियां आईयां जा तिस भाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ धारे।

अठसठ तीर्थ जी नाव है उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती

परम सम्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत जी आते टीवी राही मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेले पावन फुरमान बख्शिया वो पावन शब्द पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया

मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए दे संजरिया चिरंकाल बड़े काल बाद बड़े समय बाद बड़िया जुन्ना तो बाद यह मनुखा दे ही मिलती है। कहंदे ने संतन अवर ना काहू जाने, जिहड़े संत पुरुष ने जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने ओ किसे दे मुथाज नहीं रहिंदे। जा तू मेरे वल है ता क्या मूह छंदा, वाहिगुरु जी बस तू मेरे वल होवे फिर मैनू किसे चीज की कोई मुथाजी नहीं, कोई मुथाजी नहीं। क्यों तुद सब किश मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा, जदों मैं तेरा बंदा बनिया ना कहने लगे मैनू इंज लगता वाहिगुरु जी तू मैनू सारा ही कुछ सौंप दिता। क्यों? क्योंकि फिर उसनू कोई घाट महसूस नहीं होंदी। जे किते सोहनी वड्डी गड्डी दी बजाए वह बंदा पैदल भी जा रहा ना, वह अपने आप नू सुखी महसूस करता है। सोहने घर च नहीं एक कुल्ली च भी रह रहा तद भी मालक का शुकराना करता है। तन ते बहुत सोहने वस्त्र नहीं, मंदे वस्त्र पाके भी उस परमात्मा का शुकराना करता है, क्योंकि दुनिया भी तल तो उत्ते उठ गया। रजगुण तमगुण सतगुण इन्ना माया दे तिना गुणा तो उच्ची पदवी हो गई, हुण उत्ते लंघ गया। हुण उसनू आपां कई शब्द दिंदे आ। उस मनुख नू कहिंदे भाई यह ब्रह्म ज्ञानी बन गया, ब्रह्म नू जानन वाला। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दा भाव परमात्मा ते ज्ञानी दा भाव उस परमात्मा दे नाल डूंगी सांझ बनाउण वाला। इस बंदे ने परमात्मा दे नाल सांझ बन गई दी। उसनू कहिंदे भाई इसनू परम पदवी प्राप्त हो गई, पूजनीक पदवी, दुनियावी पदवियां तो उच्ची। उन्हों कहिंदे ने भी इहदा दसम द्वार खुल गया, क्योंकि नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। यह दसवां यही है ज्ञान का दरवाजा। नौ दरवाजिया बारे तो सानू सारिया नू पता है, पर दसवां ज्ञान का दरवाजा वह वाहिगुरु जी ने खोल देना। भरम का जिहड़ा पर्दा पिया हुंदा है बस गुरु उसनू हटाउंदा है। पिखियो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन। ते इस तुक दे विश्राम बड़े कमाल दे ने मैं सांझे कर लिया। हुक्मनामे दे रूप विच बहुत बार सुनने नु मिलदा है। पिखियो लालन, मैं अपने पति परमेश्वर नु देखिया, ओदे दीदार किते। पाठ बीच खोए, मेरे ते मेरे परमात्मा दे दरमियान जिहड़ा भरम दा पर्दा पिया होया सी, बस मेरे गुरु ने वह पर्दा हटाया भरम दा। मैनू अपने वाहिगुरु जी दे अंदर ही दीदार हो गए। पेखियो लालन पाठ बीच खोए आनंद चिता, मेरे चित विच आत्मक खुशियां बन गई। हरखे पतीन, अंदर खुशियां बन गई, मेरा ये मन परमात्मा दे प्यार विच भिज गया। हुण साधु संगत जी जिसका मन परमात्मा दे प्यार विच भिज जावे फिर उत्थे कोई विकारां दी मैल रहेगी? ते पाछा कहिंदा

हे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारिया सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइया चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुहासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिआ रियायत। देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा माननी वा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा।

अलंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान।

पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होई। वड्डा साहिब उच्चा थाओ, उच्चे ऊपर उच्चा नाओ।

गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावह इंद इदासन बैठी देवती आदर नाली गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन

अनंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद बोनोद कोड आनंद शर्म खंड की वाणी रूप तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध।

ओपन जो लड़कियां दी टीम सी ओपन कॉर मिसल फ्रीमोंड एक बार मैं फिर दोबारा बेनती करा कि जेडे बच्चे लड़के 13 तो 15 साल से जिन्होंने उत्थे पहला स्थान प्राप्त किया उन्होंने बेनती है कि वह अपनी शील्ड लैण का यतन करन।

जल संग संतन के पाइए परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ कुछ समय वास्ते गुरमत विचारा दी सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंगला चरण दे रूप विच आप जी ने पंजवे पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया हुआ पावन शब्द जो जैतसरी राग विच गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है आप जी ने सरवण किया। उस दे विच पहले पदे नू ही सतगुरु जी ने राहव दा बंद बनाया। गुरदेव बख्शिश करदे ने कोई जाने कावन ईहां जग मीत। कहन लगे कि भाई कोई विरला मनुख जानदा है कि इस संसार विच असल मित्र कौन है। मित्र तां असी बहुत बना लैने हां जदों आपां वेखदे हां दुनियावी तौर ते बचपन विच मित्र होर ने बच्चा होर अगे पढ़ाई वास्ते गया मित्र होर बन गए होर अगे गया मित्र होर बन गए जॉब ते लग्या मित्र होर बन गए अगे तो अगे इस मनुख दे मित्र बनते जाते ने। हुंदा ए है पहले मित्रां नूं ए भुलदा जांदा है तो नवे मित्र बनाई जांदा है। पर जदों गुरबाणी नूं पुछिए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे प्यारे